0: जल्दी करोगी ना तो तुम्हारी एक न एक हड्डी जरूर टूट जाएगी।
1: टूटती नहीं, टूटती ना। डॉक्टर किस काम की? वो बांधा ना, वो सफेद सफेद, वो क्या होता है?
0: सफेद सफेद? अच्छा अच्छा, प्लास्टर।
1: प्लास्टर? हाँ हाँ।
0: प्लास्टर नहीं, प्लास्टर।
1: प्लास्टर? अरे
0: पी नहीं,
1: प्लास्टर।